0: ये शोखी, ये अदाएं, ये बांकपन, इनकी कीमत भला दुनिया तय कर सकती है क्या?
1: चल इतना बता, तीनों का मिला के पैकेज में कुछ कम करती है क्या?
0: बरखुदार, हुस्न का मजाक ना उड़ा, कहीं हुस्न के हाथों तेरा मजाक ना बन जाए। मन चला है, खूबसूरत है, मगर लड़का है तू, तुझे लड़कों और मर्दों में फर्क कौन समझाए?

0: प्यारा है शक्ल से अकल का मारा है रे तू।
1: हाँ चल गई, हाँ चल गई मेरी बातों से तू चल गई। हाँ खल गई तुझे खल गई मेरी बेपरवाही खल गई। वो धर्मा तू किस खेत की मूली है जरा बता।
0: न्यूज़ पर मेरा घासरा

सजी भागला रमेशान तो जरूर बगे बनी क्या गुरु पुरे दाई गीत को बोल राखी रहेको छु सिकानु होला हाइता।

शून्य पैंसठी पांच नब्बे शून्य मोबाइल अंठानबे सूचना यस गर्नुहोस् अब डॉक्टर

0: ধানমন্ডিতে খোঁজ খবর অনুসন্ধান দেখতে পিতা বা হান্দু যান কয়েক দিন ধর সিহতের বাড়িতে প্রধানমন্ত্রী বর্তমান কিছু প্রধানমন্ত্রী সকালে চীন সঙ্গে ঐতিহাসিক সম্বন্ধ লাই নজর প্রকার করা হবে সাজা কিপকা ক্ষেত্রমা মিলের কাম করবে করনে বিষয়মা জোর দিল রাজদূত মাও মিলে প্রধানমন্ত্রী সাহালাই শুভকামনা দিতে দুই দেশ বিচার আপসি সম্বন্ধ ও সহকার্যলাই থপ সুদৃঢ় বনাউনে প্রতিবদ্ধতা জনাউনু ভয় আজ প্রধানমন্ত্রী শাহ সঙ্গ নেপাল কলাকি ভারতীয় রাজদূত নবীন শ্রীবাস্তবলে পনি ভেট গর্ন ভয়
1: सरकारले विराटनगर जुट मिल पुनः सञ्चालनका लागि अध्ययन गर्न एक कार्यदल गठन गरेको छ। उद्योगको विद्यमान आर्थिक प्राविधिक तथा कानूनी अवस्था अध्ययन गरी पुनः सञ्चालनका लागि उपयुक्त विकल्प सिफारिश गर्न विज्ञ सहितको कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरिएको हो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा आज बसेको बैठकले विराटनगर जुट मिलको वर्तमान अवस्था यसअघि भएका निर्णय तथा विभिन्न निकायबाट तयार गरिएका अध्ययन प्रतिवेदनको समीक्षा गर्दै मिल पुनः सञ्चालनका लागि आवश्यक रणनीति तय गर्ने उद्देश्यले कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयका सचिव वीरेन्द्र कुमार यादवले जानकारी दिनुभएको छ। बैठकमा सचिव यादवका साथै अर्थ सचिव र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव सहित सम्बन्धित मन्त्रालयका अधिकारी तथा सरकार भएका निकायका प्रतिनिधिहरू सहभागी हुन्छन्। सो अवसरमा जुट मिलको व्यवस्थापन सञ्चालनको सम्भावना विद्यमान समस्या तथा

0: 103.8 अन्तर्मन को आवाज
1: स्टूडियो टाइम अहिले रातिको 9 बज्यो
2: टाइम चेक को साथ में बनकेवा कालिका सुन चाँदी पसल दुलेगौड़ा हेल्पोस्ट चोक अपने भवन में छापा वाला सुन का आधुनिक डिजाइन का तैयारी कर गहना राशि अनुसार का पत्थर पाइन अर्डर अनुसार का गहना तैयार कर साथ ही पुरानो कर गहना नया गहना संग साठफेर पनी प्रोपाइटर बाजीराम सुनार विनोद सुनार मोबाइल 98165935301

0: 103 थोपलो 8
1: अन्तर्मन को आवाज
2: स्टूडियो टाइचेन अहिले बिहानको 5 बज्यो टाइम चेक को साथ में बनकेवा काली का सुन चांदी पसल दुलेगौड़ा हेल्पोस्ट चोक अपने भवन में छापा वाला सुन का आधुनिक डिजाइन का तैयारी कर गहना राशि अनुसार का पत्थर पाइन अर्डर अनुसार का गहना तैयार कर साथ ही पुरानो गर गहना नया गहना संग साठ फेर पनी प्रोपाइटर बाजुराम सुनार विनोद सुनार मोबाइल 98165935301